0: नान, नगेट्स, पनीर, इंडियन ग्रोसरीज, पिंक हिमालयन सॉल्ट, हल्दीराम स्नैक्स एंड रेसिपी बुक्स. आवर रिलीजियस बुक्स आर डिस्काउंटेड. द देवी उपासना, बंदे मोचन, वंदनम प्रेयर बुक्स एंड मोर. मेक द लिटिल स्टोर लिमिटेड ऑफ रैप्सी स्ट्रीट क्यूरैप पार्ट ऑफ योर नवरात्रि. वी आर योर स्टोर, द लिटिल स्टोर.
1: दिस दिवाली एज वी लाइट आवर डियर्स, मेक श्योर एवरी जर्नी इज अ सेफ वन. लाइट्स अप द रोड विद ब्रांड्स आई कैन एंजॉय 15% ऑफ मिचेलिन, ब्रिजस्टोन, बीएफ गुडरिच, Firestone and Hankook tires. Whether you drive a car, SUV, 4x4, wagon or minivan, save on trusted brands. This Diwali, drive safer, save money and light up the road with Brandtech. Offer valid while stocks last on selected tires and until November 6th, 2026.
2: A new possibility. And while the world keeps moving forward, you deserve a partner steady enough to help you move with purpose. One that's been supporting people, businesses, and communities for generations. In a world that moves, we remain.